0: है भंगुर प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे था बाबा जी असि भी इन्हों के दर्शन करन आया किथे मिलेंगे
0: सचखंड विखे
1: सचखंड
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्होंने दर्शन नहीं निराश न हो बेटे उन्हों का रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने
1: तुंग पिंड
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
2: तन गुरु रामदास

0: 탐구를 한다. 탐구를 한다. 왜 티고게? 왜 못도다게? 맥잘 펼쳐가? 던져지네. 그때에서도 더팔 제가 아직은 너무 지금 무려. 라지니, 라지니, 나 죽어버려. 나 잘못 살다 라지니, 내가 로또 따게 라지니, 나 죽어버려.
1: 그럼 어떡해?
0: 나 꺼버려. 무슨 부셔내니 라지니?
1: 나께는 내 빠띠, 지난 날에 죽게 된 새끼들이, 도대체 내 빠띠?
0: 나이 토다 빠띠에 라지니? 토다 땡이다. 무슨 정권이 라게, 무슨 산지도 벌신 그래, 무슨 몸으로 라게, 무슨 주위로 할 바위 또 많이 돼. 나 थोड़ा पति है मैं थोड़ा पिंगला और जिले से मैं थोड़ा पिंगला
1: एक ठीक है पर थोड़े रोग के भी ठीक हो या
0: ते सारी करमा दर्श चलती है थोड़े जान तो बना मेरे कन्नत फिर वही आवाज आई कागो हंस करे ते मैं रेड़ता रेड़ता ऐ छपड़ी दे कंडे ते आ गया और पानी नु फड़ के पानी च उतर गया जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन
1: तुसी तुसी कैनन भर के पानी कैसी ना केरे हाथ में
0: ऐसा
1: अच्छा तो फिर तुम ऐसा तुम्हें पानी पाओ मैं अपनी अखरी वाली चलता चमत्कार देखा।

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ली, माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी, धन गुरु अमरदास,
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: नस तो जाए सरोवर।

0: पत्नी तू ताने पुत्र ते ताने तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश।
1: नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश।
2: बेटी
3: पिताजी
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
3: पिताजी माँ
2: पुत्र बेटी मैं बड़ा शर्मिंदा
3: यात्रा न को पिताजी।
2: हाँ बेटी मैं गर्सा तू साथी आसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास वो सचमुच सर्वशक्तिमान उस दिन भी लाभ परंपरा है।
0: राजा तू ही जा
2: नहीं संत जी सिर्फ दूरी चंद को हूं।

0: नहीं पिता जी, जिथो मेरे पति नवा जीवन मिलिया सारे लिए वही थान सुलखनी।
1: रजनी ठीक कहती है राजा दूनी चंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा के तपस्या का फल समुचे तौर पर ऐसे स्थान से मिलिया है। ऐ धरती बड़ी पावन है, एनु ऋषिया मुनिया का वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ऐ छकड़ी अमृत का कुंड है।
2: अमृत के इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पर्दा तक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन कंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई अमृत सरोवर के चौहों कूटा वाल खुले तरह हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

दान यकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कथा कैर ना बने तां परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी पीछे नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना कराया चाहिए, सतनाम भला हो जाए। वो तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया, यो आया वा जी। कुछ होर बंदियां ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना साडा चढ़ाना, उहदे पिछे मैंने जाना पै रहा। पता नहीं हुण कईआं को की कोई लिया सतनाम नकली पता। कार्ड आ जाए जी, विआह है जी, मदद करो। असि के बाबे दे आ खुल के कही दा, तू कार्ड ले आया मदद ली गया तो। हाँ जी विआह है, बच्ची का विआह है। उसी आप कथा की थी, पैर सेवा कर ली। फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस, जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए, किन्नियां संस्थावां कोल कार्ड लैके मदद मंगणगे। जे सच दसेंगा तां 1300 रुपया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई वार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है, आखो सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे विआह नूं वपार बना ले, इत्थों भी लै लो, उत्थों भी लै लो, उत्थों भी लै लो, उत्थों भी लै लो, तुसीं वेखणा नकली भी। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला है, आर्थिक पक्षों कमजोर है, ओदी बच्ची का विआह है, एक तो जरूर जा, भावे 10 मिनट लई जा, तेरे जान नाल ओदा माण वधेगा। एक ओनू 4 गुणा सगन भावे लफाफे च दे आ, इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, ये गुरु नानक वेले का इतिहास फरोलो ना। दो भरा सुनदे हो ना सूरज प्रकाश, शिया गजन दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवें शिया गजन। विआह सी ना शिये दी कुड़ी दा, वो बरात जदों आई सी ते उन्होंने आंदियां कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी। क्या कि नहीं, वो रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदियां सी, 2-2 रातां। हुण ते रवाज बदलदे जा। उन्हां कहा 7 दिन ते उन्हूं फिक्र लग गया सी, आम चारा सिख कहते जिन्ना लाका सी, फिर उन्हें हर कोई अपने घरों, क्यों दोवे नाम जपण वाले सतनाम करना। 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी, कहते पदार्थ वंडींदे रहे ने, बरात छकदी रही, संगत छकदी रही, तोट नहीं आई, संगत बोड़ गई। आखो सतनाम।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद माणिया है। असि आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो ता आप तंता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असीं तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनी वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारे। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो।

0: सत्कार जो साथ सुंदर जी तंगुगन सत्य पाशाह जी भी आगोश राम बैठ के गुरु रामदास सच्चे पाशाह जी काम कीता है राग नट नारायण हल्ला चौथा अपने तौर पर बड़ा औखा राग है पर गुरमुखा की कृपा नाल इंस्पीरेशन नाल गा हो जाएगा और नाल ही नाल तुके भी सुखी होनी है। दो दिन तो हुक्म करते रहे पे तुम्हारे गाउनी है तुम्हारे गाउनी है। मैं क्या दो चीजा कट्ठिया हो रही राग भी औखा है ताल भी औखी है। तो खैर मैं समझता हाँ राजा साहब जी महापुरुष नाव कम वाले और सत्य पाशाह जी रामत है दूसरा दास कम है। एक बड़ी प्रसन्नता की बात हुई है अगे ये दीवान तकरीबन हफ्ता या अठ दिन ही चलता होंदा सी रौनक भी बड़िया बनदियां सन पर राजा साहब जी अपनी रामत बस्ती देखो कि यह रोज रोज वधदा जा रहा था जो नौ दिन तो यह हो जाना है जब तक संपूर्णता होनी। सतगुरु के दरों पर बरसाए सारे महापुरश और गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह आप असीसा बख्शे रामता करे ताकि शब्द इस तरह गाया जा सके। पर पेश कर मैं सारे संपूर्ण खेतन दिता हाँ कि एक बार बुलंद आबाजी ना फतेह की जाओ जी भरपूर तौर पर उचारो वाहेगुरु जी का
1: खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: पर वीर तो पिछे पिछे संगत ने भी मेरी इदा बेनती है सात संघ जी सारे उच्चारण करो वाहेगुरु जी का खालसा नट नारायण तुम्हार अंदर जी।

परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले। ये लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारे है उन्हां नूं सत

तारा राणी सत संगत विच जाया करदी सी। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए। इसकी पतिव्रता बड़े धर्म विच रहन वाली स्त्री का नाम तारा मती सी। रोजाना पिछली रात सत संगत विच जाया करदी सी, पर राजा इस पास्यों अजे अज्ञात सी। राजा जी दे जागण तो पहला ही वापस आके अपने मंजे ते लम्मी पै जांदी। इस तरह करदिया राणी नू काफी दिन लंघ गए। एक दिन राणी दे जान तो पिछों राजे दी अचानक जाग खुली। की वेखता है कि राणी कोई नहीं। राणी दा बिस्तरा खाली जान के बड़ा चिंतातुर होया कि राणी ऐस वेले किथे चली गई। राणी दे चाल चलन तो राजे नू कुछ शक हो गया ते विचारदा है इसका भेत जरूर लेना चाहिदा है। ये रात नू किथे जांदी है। दूजी रात हुई, राजा सौ गया। राणी राजे नू सुता जान के अपने मंजे तो उठी, खरावां पा के इशनान वाली जगह पर आई ते इशनान करके वस्त्र बदले, फिर साध संगत विखे जान लई तुर गई। राजा इस दे सारे करतब नू देखदा रहा, पर जिस वेले राणी तैयार होके महलां चो बाहर निकली तां राजा भी मगर मगर तुर पिया, भई किथे जांदी। जिस वेले राणी अपनियां खड़ावां ला के संगत विच जाके बैठी तां मगरों राजा उसकी खड़ाम चुक के महलां विच लै आया ते कपड़े विच लपेट के संदूक दे विच रख दिती ते बाहर जंदरा मार दिता। इधरों सवेर दे समय दीवान दी समाप्ति होई और संगत उठ के आपो अपनी घरी जान लगी। राणी मत्था टेक के बाहर निकली तां की तकिया, एक खड़ाम है नहीं। मन विच विचारिया जे एक खड़ाम लै गई घर तां पुछ होवेगी, राजा पुछेगा कि दूसरी खराम किथे, ते जे तू बाहर नहीं निकली तां घर विच किथे गैब हो गई। राणी मुड़ के साध संगत विच आके बेनती कीती कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी खराम लभ पवे, मते मेरे परम पति राजा नाराज ना हो जान मेरे नाल। सात संगत बोलो श्री, जहां एक मन होके एकाग्र चित होके संगत ने अरदास कीती तां वाहिगुरु ने आप कृपा करके उस दे नाल दी पुरानी खड़ाम जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी बार की तकिया जोड़ी खड़ावां दी पई है। राणी खुशी खुशी घर नू आई। राजा इस गल दी उड़ीक विच सी, भई आवेगी तां पहला सवाल ए करांगा कि तेरी खड़ाव किथे है। उच्चारण करो श्री। पर जदों घर आई खड़ावां दोनों ही पैरियां हुईयां सन। राजा हैरान हो गया, भई कोई नवी भी नहीं है, पुरानी दे नाल पुरानी मिली है। अख्या ए खड़ाव, एक खड़ाम तो मैं तेरी चुप के ले आंदी है, ते ए कित्थों आ गई है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नैन कटोरे भर आए। अख्या राजा मैं रोज सत संगत विच जांदी हां ते नित नेम करदी हां, तेरे लई भी परमेश्वर कोलों खुशियां मंगदी हां, अपने लई भी मंगदी हां, तेरे लई भी अरदास करदी हां कि वाहिगुरु तेरा भी लोक परलोक सुहारे ते मेरा भी सुहारे। राजे ने जदों ऐसे वचन सुने मन ऐसा प्रभावित होया कि फिर जितना समा संसार ते रहा धर्म दा राज कीता अते निता प्रति दोनों टाइम सत संगत च बह के मालक दे गुण गांदा रहा। इन्हां पंक्तियां नूं सिद्ध कर दिता कि जो इच्छा सोई फल पावे। प्यारी सत संगत, जो भी कोई इच्छा करके सत संगत विच आउंदा है ना।

सत संगत ना मिले शाकत पुरशां दी संगत मिल जावे तां जितने मनुख दे शुभ कर्म होंदे आन ओ नष्ट हो जांदे हन। जिस तरह धन गुरु नानक पातशाह जी दे पास एक सेवक आया करदा सी, रोज निता प्रति इसने आना सतगुरां दे चरणां विच नमस्कार करके बाणी श्रवण करके जाना। इहदे नाल एक होर मनुख आया करदा सी, ओ माड़े पासे वल मुड़ जाया करे, घरों तो दोनों कट्ठे निकलने ते कहना, लै भाई मित्रा मेरा रस्ता तां कोई होर है, तू जा सतसंगत विच जाना है तां मैनू सतसंगत विच की मिल जाएगा। उच्चारण करो श्री, मन विच विचार कीती भाई ये सतसंगत नहीं करदा, माड़े पासे जांदा है, कार विहार करां दे सुख काफी इसनू प्राप्त हन, ते मैं सतसंगत वल जांदा हां मेरी आत्मा तो बड़ी प्रसन्न है, पर जितने पदार्थ इस कोल हन मेरे कोल नहीं हन। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विचों मथा टेक के ए पुरश जदों वापस आ रहा सी ना, ते इहदे पैर विच कंडा चुभ गया, पैर जख्मी हो गया, ते आके अपने मित्र ओ मित्र कहन लगा, लै भाई आज ही फैसला हो गया है, भाई तू सत संगत विच गया ते तेरा ए हाल होया, ते मैं माड़े कर्म लई मैं ऐश करन लई जांदा हां ते आज मैनू एक मोहर मिली है सोने दी, आ दस तेरा सतसंग चंगा होया कि मेरा रस्ता चंगा होया। ए प्रेमी कहन लगा, फिर मेरे नाल चल, धन गुरु नानक पातशाह जगत तारक आप आए बैठे हैं, इस गल का फैसला वो कर देंगे। जाए दोनों प्रेमी आए, सतगुरां दे चरणां विच अरदास कीती, बेनती कीती, महाराज इसका की कारण है, मैं सतसंगत विच आया ते मेरे पैर विच सूल चुभ गई है, ये विकारां विच घूम रहा है, माड़े कर्म कर रहा है, ते इसनू मोर लभी है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, भाई जिथों इसनू मोर लभी है उस धरती नू पुटो जाके वेखो उथे की पिया, ते जिथे तैनू कंडा चुभिया तू उस धरती नू पुट वेख उथे की पिया। सात संगत बोलो श्री, जिसनू मोर लभी सी ना उसने आके उस ही थां तो जदों धरती पुटी तां की तकदा एक देग भरी हुई है कोलियां दी, ए मोरां कोले हो गईयां। जदों मनुख माड़े कर्म करदा है विकारां दी अग विच चला जांदा है तां फिर इहदे शुभ कर्म सड़के सुआह हो जांदे हन। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, लै भई भले पुरशा जे तू सत संगत करदा माया नू भले पासे लाउंदा तेरे कदम भले पासे चलदे तां एडी वड्डी देग मोरां दी तैनू प्राप्त होनी सी, क्योंकि तू पिछले जन्म कुछ दान कीता सी ते ओ प्रफुल्लित होया सी, पर तू विकारां दी अग विच सारे पुन साड़ दिते, ते जे भले बंदे नूं जिथे सूल चुभी सी ना ओ धरती जदों पुटी तां तल्यों सूली निकली, आख्या तैनूं अज सूली ते चढ़ाया पर तूं सत संगत विच तैनूं सूली बचा के एक कंडा चुभो के पूरा कर दिता है, इसलिए भाई साध के संग ना बिरथा जावे। आख्या सत संगत विच जान वाले नूं फल प्राप्त शुभ कर्मां दा, ओ कदे संसार ते आके दुखी नहीं होंदा, ओ सदा खुशियां मानदा जिन्हां ने जपया है श्री जो

रोज अरदास करदा सी। ऐ परमात्मा आओ मेरे हृदय दे थड़े ते बैठो, बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कह लगे खोल भाई बुआ तेरे हृदय दे थड़े ते बैठी, जां बुआ खोलिया इस हृदय दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोग, सारा थड़ा भरिया हुआ। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे है थां, थड़ा ते सारा भर के रखिया हुआ। कह लगा लै इह तां गल भुली गई सी, आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया गलों फड़ के बाहर छड़ आया, जामुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बार अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गए उनू बिठाने। ओ कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया है, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं, हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

आओ भाई बंदी छोड़ नू अरदास की सीना पातशाह सी कैद होए पे मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दें।

बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना इंसान नहीं काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत बेसवा पूत नना बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आप बिना सिमरन तो खोता बनिया खड़े।

अपने पुत्र प्रहलाद नु कहंदा सी तू मेरा नाम जप क्योंकि मैं परमेश्वर हां। प्रहलाद कहंदा सी नहीं तू परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ओ है जिन्ने तेनू पैदा कीते, जिन्ने तेनू शक्ति दिती है। हरनाकश ने प्रहलाद नू पानी विच डोबन दी कोशिश कीती, आग विच साड़न दी कोशिश कीती, फिर खड़गा

नारायण नारायण करना पुत्र नारायण नारायण परमेश्वर का नाम भी अंत वेले जमदूत आए अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गए पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा नारायण के मनो जमदूत अट गए देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया पावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वारी नाम लिया

सूखे बस्तर दी थी, सेवा की थी, बेनती की थी मां पुरुषानु के मैं बड़ी पापण, कृपा करो मेरा भी उधार होवे। ता मां पुरुषा ने कहा ये साढ़े कुल तोता है, ये ले ले। अमृत वेले उठ के

इतनी सुंदर कि इहदे नाल शादी कराने वास्ते इंद्र देवता आप तैयार होया। होर भी बहुत राजे महाराजे चाहते सन कि अहल्या दे नाल साडी शादी होवे। उस वक्त लड़ाई का खतरा

इंद्र देवता सारे पृथ्वी दी परिक्रमा करने वास्ते अपने अपने रथां ते तैयार खलोते ने। गौतम ऋषि अपनी भगवान की परिक्रमा करन लग पे।

रथ भजाई जा रहे है। इंद्र बड़ी कोशिश करता है पर गौतम ऋखी तू अगे नहीं निकल सकता, निकले भी क्यों, क्योंकि गौतम

इंद्र जेड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम रिखी दा व्याह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसे ना किसे तरीके अहल्या नूं मैं प्राप्त करना है। इसे करके गुरु साहिबां ने कहा बाणी विच, ऐ भाई एक अकाल पुरख नूं नमस्ते करो, ओनू मत्था टेको, क्योंकि ओदे विच कोई औगुण

इंद्र देवता अपनी सभा लाके बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखे है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा इंद्र

गौतम दी घर वाली अहल्या नू प्राप्त करने वास्ते इंद्र दी मदद करन वास्ते चंद्रमा भी तैयार होया। चंद्रमा ने कहा, आ इंद्र तू अहल्या नू अपने वास करना चाहना है, मैं तेरी मदद करांगा। सलाह की थी के गौतम ऋषि रोजाना अमृत वेले उठ के तकरीबन 2 बजे इशनान करन जांदा है गंगा ते, और गौतम ऋषि उदों उठदा है जदों कुक्कड़ बांग देंदा है। चंद्रमा कहन लगा, मैं कुक्कड़ बन के 2 बजे तू पहला ही बांग दे देंगा, गौतम ऋषि नान चला जाएगा।

लगी हुई नहीं। गौतम ऋषि ने जल्दी नाल इशनान किया, अपने घर वाल तुर पए। जदू घर दाखिल होने लगे अपनी लड़की नु पुछिया कि बेटा अंदर कोई गया? अंजनी कहन लगी, नहीं पिता जी अंदर कोई नहीं गया, पर एक बिल्ला जरूर गया। गौतम ऋषि अपने कमरे च दाखिल होए ता देखिया कि अंदर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारिया होया और अहल्या दे कोल बैठे। गौतम ऋषि नु बड़ा गुस्सा क्रोध आया, उन्होंने उसे वक्त सराफ दे दिता इंद्र नु, ऐ इंद्र तू ठीक नहीं कीता, जा तेरे शरीर ते हजार भागो।

हो गए ए इंदर शर्मिंदा हो के ओथो निकल तो रहा। गौतम रिखी ने अहल्या नु शराप दिता तो सिल पत्थर दी बन जाएंगी। अहल्या हाथ जोड़ के कहन लगी मेरा की कसूर है जो तुसी मैनू शराप दे रहे हो। गौतम रिखी कहन लगे शराप दे चुका और पत्थर दी तू बन जाएंगी। अहल्या हाथ जोड़ के कहन लगी फिर मेरा उदार किस तरह होवेगा। गौतम रिखी कहन लगे त्रेते युग विच जदों श्री रामचंद्र बनवास नू जानगे ता उन्ना दे चरना दी शो दे नाल तेरा उदार होवेगा। फिर अपनी लड़की दे कोल आए लड़की नू शराप दिता के तेनू कुआरी नू गर्व होएगा और कुकड़ बनेरे ते बैठा सी चंद्रमा उसनू अपना गिला परना मारिया ते नाले शराप दिता के तेनू एक कलंक हमेशा इसे तरह चिमड़िया रहेगा। ते सचमुच उसे तरह होया अहल्या पत्थर दी बन गई चंद्रमा नू कलंक लग गया। इंद्र देवते दे शरीर ते हजारां भाग हो गए। ओ इंद्रपुरी हुण वापस नहीं जांदा।

कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। कृष्ण भगवान अपने साथियों दे नाल गेंद दे नाल खेड़दे पए सन। बड़ा समा खेड़द्या बीतिया तो कोल एक छोटा जिहा पानी का तला सी। खेड़द्या खेड़द्या ओ गेंद उस पानी दे विच सुट दित्ती। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उस तला दे विचों गेंद कढ़ी भी नहीं सी जा सकती क्योंकि उत्थे काली नाग दैंद रहिंदा सी, जिहड़ा पानी नूं जहरीला कर छड़दा सी। कोई भी डंगर कोई पशु पानी पींदा सी उत्थे मर जांदा सी। पर गेंद जदों डिगी ते कृष्ण भगवान कहन लगे मैं गेंद कढ के लियावांगा। सारे लोकां ने रोके, कहन लगे नहीं इत्थे काली नाग रहिंदा है, ओह तैनूं डंग मार के ते खत्म कर देवेगा। लोक रोकदे रह गए पर कृष्ण भगवान ने पानी विच छाल मार दित्ती और देखदिआं देखदिआं पानी दे विच लोकां दे सामने डुब गए। लोकां ने कहा कृष्ण डुब गया, पर भगवान किवें डुब सकदा है पानी दे थले। नाग नूं जाके धौण तों फड़ लिया। जदों नाग दे नाल युद्ध होया ते काली नाग हार गया और बेनती करन लग पिया भगवान कृपा कर ते मेरी जान बख्श दे। भगवान कहन लगे एक शर्त, ए जगह छड़ के चला जा तां तेरी जान मैं बख्शांगा। काली नाग कहन लगा ए भगवान जिस तरह तुसी कहोगे मैं करांगा, पर मैनू जानू ना मारियो, मैनू जीवन दान दियो। ता कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिता। काली नाग ते सवार होके एक हाथ विच गेंद फड़ी ते कृष्ण भगवान उस पानी तो बाहर आए। जदों लोकां ने देखिया कि कृष्ण भगवान जिंदा ने और काली नाग दे उत्ते सवार ने ते चार चुफेरे जय जयकार होण लग पई, तो नामदेव जी कहंदे ने कि भगवान ने कंस पापी नूं मार के मुक्त कीता ते जिहड़ा काली नाग सी दुष्ट उहदी बेनती करन ते उहनूं वी जीवन दान दिता।

राग गौड़ी बैरागन विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इसकी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द का गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

ये बेनती कौन कर रहे है, ये अरदास कौन कर रहे है। गुरु नानक नूं जिस किसे ने भी जिथे किथे पुकारिया, गुरु नानक उस दे दुख कटन वास्ते पहुंच गया। अज संसार नूं तारदे होए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दीपालपुर दी धरती ते जा पहुंचे। शामा दा समा है, ते साहब जी ने मर्दाने नूं आख्या वही जा मर्दानिया, और दुकानदार कोल पुछ वही कि असी मुसाफिर हां, प्रौणी हां, संसार ते आए और इत्थे मुसाफिर बन के दीपालपुर आए हां, भाई एक रात बितानी है। जे रात तू दुकान बंद करके घर जावे तां असी तेरी दुकान दे बाहर आराम कर लवांगे। दीन दुनिया दा मालक सर्वशक्तिमान आप नारायण कलातार धन गुरु नानक सच्चा पातशाह रात ठहरन वास्ते थां मंग रहे। सत सगत बोलो श्री ते जदों मर्दाना दुकानदार को लग गया, भाई आ तू हट्टी बंद कर लो मैं तां सी रात इत्थे ठहर जाई। वो कहिंदा भाई मैं आप नूं जानदा कोई नहीं, मेरी तुहाडे नाल कोई जान पहचान नहीं, ते तुसी इत्थे ना ठहर, किथे होर चले जाओ। संसार ते ऐसे भी सन जिन्हां ने गुरु नानक दा दर्शन पा के भी ओदे चरणा दी छोह ना लै सके। भाग होवन तां चरणा दी छोह प्राप्त होवे। कह दिता महाराज असी तुहानू नहीं जानदे, कृपा करो अगे चले जाओ, रात ठहरन वास्ते किथे होर थां ढूंढ लो। दीन दुनिया दा मालक जगत गुरु धन गुरु नानक सच्चा पातशाह कहन लगा, चल मर्दानिया भाई जे इत्थे नहीं ठहरन दी थां तां किते होर चलिए, चल इस पिंड विचों बाहर चलिए, शामा दा समा है। मर्दाने ने अखां उते हाथ रख के वेख्या, आख्या बाबा ओ दूर एक चुगी जिदे विच रोशनी है, लेकिन है इथों दूर पिंड तो बाहर दिखदी है। हजूर कहन लगे चल मर्दानिया फिर अज रात उथे ही बिताईए, चल के रात उथे ही कीर्तन करिए, उथे ही परमेश्वर दे गुण गाइए, अज रात सफली करिए। साहब जी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बाले मर्दाने नू नाल लीता, और जदों उस चुगी दे बाहर आके खड़ोते, साहब जी ने आख्या मर्दानिया जा भाई अंदर वेख इस चुगी दा मालक कौन है, ते उदे कोलों पुछ भाई अज रात असी इत्थे बिता लईए, सवेरे चले जावांगे। जदों मर्दाना चुगी दे अंदर गया ते चट बार आया मुंह ते पल्ला मर्दाने दे, गरीब निवाज अंदर ता बड़ी बदबू है, क्यों मर्दानिया? पातशाह अंदर एक कोड़ी पिया हुआ है जिसे हाथ पैर कोड़ दे नाल गल चुके हैं, सारी थां अंदर बदबू हुई पई है। गरीब निवाज अंदर इत्थे रात नहीं ठहरन दी कोई थां। हजूर कहन लगे मर्दानिया जा उस कोड़ी नूं बार सद के लिया,
गरीब निवाज ओ तां तुर भी नहीं सकदा, उहदे तां पैर ही गल चुके घोड़ दे नाल। अच्छा मर्दानिया, जे ओ आप नहीं आ सकदा तां तू उसनू खिच के बाहर ले। मर्दाना, उस कोड़ी नू त्रू के खिच के बाहर लियाया, ते लिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे सन्मुख कीता। लोग गरीब निवाज साहब जी ने तकिया, कौड़ी वाल मेर दी नजर की। कौड़ी ने जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, ऐसे रूहानियत दे दर्शन कीते, अकाल पुरख वाहेगुरु दे रूप दे जदो दर्शन कीते, तां कौड़ी दा तन मन ठर गया। आ जिस कोड़ दे विच हाय हाय बिलख रहा सी, कुरला रहा सी, ओ दुख भुल के गुरु नानक वाले अखा ला के तक रहा है। आख्या, महापुरखो, हे रब दे प्यारे हो, रब दे रूप कितों आए हो, ते मेरे जैसे कोड़ी दे कोल रात ठहरन वास्ते जिसनू घर वालिया ने भी कट छड़िया, दुरकार के कट छड़िया, क्योंकि किस वेले मैं भी बहुत धनी सा, मेरे पास बहुत पैसा सी, मां प्या दा साया सिर तो उठ गया, ते जितने मित्र दोस्त सन सारे धन नू ही चाहन वाले सन। ऐसी कुसंगत मिल गई मित्रां दी दोस्तां दी कि मैं गलत रस्ते तुर पिया, ते ओ जेड़ा तन सी उदे नाल मैं पाप कीते, ते जदों तन खत्म हो गया ते मित्र दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए, ते उस तन दे नाल जदों मैं पाप कीते सन, ओ पाप हुण मेरे तन ते कोड़ बन के फुट पए हन। साथ सगत बोलो श्री, हुण जदों मैं कोड़ी हो गया तां मेरे घर वालिया ने भी आख्या, हुण तू घर दे विच रहण दे लायक नहीं, क्योंकि तू छूत दी बीमारी है, जे तेरे नाल कोई होर लगेगा ओ भी कोड़ी हो जाएगा। इस वास्ते मैनू आ घरों पिंड विचों कढ के इत्थे चुगी पा के बिठा गए। कितने कितने दिन बीत जांदे हन, मैनू मनुख दी शकल नहीं दिसदी। कोई तरस करके रोटी रख जावे तां मैं खा लैंदा, नहीं तां भुखे ही समा बीत जांदा। लेकिन हे रब दे प्यारियो, तुसी आज इस स्थान पे जिसनू संसार विच सारिया ने दुरकार दिता, सारिया ने निकाल दिता, तुसी मेरे कोल रात ठहरन वास्ते आए हो, मैं आप दी किवें सेवा करा, मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर कोई नहीं, आ वेखो कोड़ लग्या होया हथां पैरां नू, जे इना हथां दे नाल मैं साध संगत दी सेवा कर लेंदा तां खबरे आ दुख मैनू ना लगदा, जे इना पैरां दे नाल मैं माड़े पासे तुर के ना जांदा, सत्संग वल जांदा, तां अज मैं कोड़ी ना होंदा। लेकिन आए हो तां हुण मेरे ते कृपा करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों उस दा कोड़ी दा आ विरलाप सुनिया, दुख सुनिया, कोड़ दे विचकार बिलख रहा है, तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे तनाश्री राग दे विच शब्द उचारिया। ये साहब जी ने की आख्या,